0: मैं हूँ हिरा श्वार। इस प्रोग्राम के जरिए आप जापानी जबान के दिलचस्प और कारामत जुमले सीखेंगे। जब आप जापान आएं तो इन्हें इस्तेमाल करते हुए अपने कयाम को दिलचस्प बना सकते हैं। प्रोग्राम में आप जापान की सकाफत और सियाहती मकामात के बारे में भी जानेंगे।
1: आज का 11वां सबक अपनी मतलूबा चीज की दस्तियाबी दरियाफ्त करने से मुतालिक है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम टोक्यो के एक मकबूल सियाहती मकाम असाकुसा के बारे में बताएंगे।
0: वियतनाम की तलबा ताम चीनी फोटोग्राफर मियाँ के साथ टोक्यो के असाकुसा इलाके में आई हुई है। वो दोनों नकमी से दूरी पर तहाइफ की दुकानें देखती फिर रही हैं।
1: तो आइए सबक नंबर 11 का मकालमा सुनते हैं।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
5: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
6: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
0: मिया ताम से कहती है।
2: この T シャツ見て。
1: ये T-shirt देखो।
2: निंजा って書いてある。
1: इस पर निंजा लिखा हुआ है।
0: T-shirt देखकर ताम कहती है।
3: आ, निंजा।
1: ओ, निंजा।
0: दुकानदार दोनों को इस्तकबाल करते हुए कहता है।
4: いらっしゃいませ।
1: खुशामदीद।
0: ताम दुकानदार से पूछती है।
3: すみません。 お守りはありますか？
1: माफ कीजिएगा, क्या आपके पास तावीज है?
0: दुकानदार जवाब देता है।
5: ちょっとここにはありませんね。
1: माजरत, हमारी दुकान में नहीं है।
0: मिया ताम से कहती है।
3: ताम, お守りはお寺にあるよ。
1: ताम, तावीज मंदिर में होते हैं।
0: ताम कहती है।
6: お寺ですか？
1: मंदिर में।
0: मिया ताम को मशवरा देती है।
3: 行きましょう。
1: आओ चलें।
0: अनवर साहब, जापानी तावीज कैसे होते हैं?
1: ओमामोरी कहलाने वाले ये तावीज शिंतो मत की इबादतगाहों और बुद्ध मत के मंदिरों में दस्तियाब होते हैं। इनके बारे में ये एतकाद पाया जाता है कि ये खुशकिस्मती लाते हैं या बुरे वाकयात से बचाते हैं। ये मुख्तलिफ अकसाम के होते हैं, लेकिन ताम जो तावीज ढूंढ रही है वो छोटी सी थैली की किस्म का है। तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
3: すみません。お守りはありますか？
5: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
6: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, क्या आपके पास तावीज है?
3: お守りはありますか?
0: अगर आप इसे याद कर लें तो अपनी मतलूबा चीज दस्तयाब होने के बारे में पूछ सकते हैं।
1: अब हम आज के कलीदी जुमले की तशरीह करते हैं। ओ मामोरी के मायनी है तावीज। इसके बाद का वा मौजू को जाहिर करता है। आरिमस दरअसल फेल आरू यानी होना की मस शक्ल है, और आखिर में का लगाकर जुमले को सवालिया बनाया गया है। अब आज का नुक्ता, किसी दुकानदार से अपनी मतलूबा चीज होने का पूछने के लिए उस चीज के नाम के बाद वा और फिर आरिमस का लगाया जाता है।
0: अब वक्त हुआ है मश का, तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
7: आरिमस का, ओमामोरी वा आरिमस का, ओमामोरी वा आरिमस का।
0: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: और अब एक मुख्तसर मकालमा सुनिए। एक सयाह मालूमाती मरकज में किसी चीज की दस्तयाबी के बारे में दरियाफ्त कर रहा है।
8: すみません, 地図はありますか?
9: हाई, こちら です।
1: अब इस मकालमे की तशरी, सयाह पूछता है।
8: すみません, 地図はありますか?
0: माफ कीजिएगा, क्या आपके पास नक्शा है?
1: आप पहले सीख चुके हैं कि किसी से कोई सवाल करते वक्त उसे मुतवज्जे करने के लिए इब्तिदा में सुमीमासेन कहा जाता है। चीज़ के मायने है नक्शा। मालूमाती मरकज के अमले की फर्द सयाह को नक्शा देते हुए कहती है।
9: हाय, कोचिरा देस।
0: जी, ये लें।
1: अगर मरकज में नक्शा दस्तियाब ना हो तब भी मुमकिन तौर पर अमले का फर्द साफ इनकार करते हुए आरिमासेन

रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 12 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ताजा प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे बिल्कुल अस्वीकार्य और बेतुका बताया है। ईरान ने सप्ताहांत में पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से इसे अमेरिका को भेजा था। ट्रंप ने सोमवार को चेतावनी दी कि संघर्ष विराम नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये कभी भी टूट सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान का प्रस्ताव बेकार है और उन्होंने उसे पूरा पढ़ा भी नहीं है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि उन्हें अब भी विश्वास है कि राजनयिक समाधान काफ़ी हद तक संभव है। हालांकि उन्होंने ईरान पर रुख बदलने का आरोप लगाया और उसके नेताओं को बेहद बेईमान कहा। उधर ईरानी अधिकारियों ने अपनी मांगों को अनुचित बताए जाने के आरोपों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अमरीका एकतरफा नज़रिए और अनुचित मांगों पर अड़ा हुआ है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने रविवार को ईरानी प्रतिक्रिया पर खबर छापी, जिसमें कहा गया है कि प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य लेबनान सहित अन्य क्षेत्रों में संघर्ष समाप्त करना, नाकाबंदी हटाना और ईरान की जब्त परिसंपत्तियां मुक्त कराना है। उधर रविवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार परमाणु मुद्दे पर अगले 30 दिनों में बातचीत की जाएगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि ईरान ने अपने कुछ अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को पतला करने और शेष यूरेनियम को किसी तीसरे देश को सौंपने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने अमरीकी अखबार की खबर का खंडन करते हुए कहा कि परमाणु मुद्दे के दावे झूठे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता के लिए चीन की यात्रा करेंगे। उन्होंने सोमवार को कहा कि वे ऊर्जा सुरक्षा और ईरान पर चर्चा करेंगे और ये भी बताया कि चीन होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते तेल की बड़ी मात्रा का आयात करता है। ट्रंप बुधवार रात पेचिंग पहुँचने वाले हैं और बृहस्पतिवार को वे शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि वे ताइवान का मुद्दा मुझसे ज़्यादा उठाएंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा कि चर्चा ऊर्जा और खूबसूरत देश ईरान जैसे मुद्दों पर होगी। ट्रंप ने कहा कि वे शी जिनपिंग का बहुत सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह भावना पारस्परिक होगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पश्चिम एशिया में तनाव कम करने में चीन रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। ट्रंप ने कहा कि वे हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक समाचार पत्र एप्पल डेली के संस्थापक जिमी लाई के मुद्दे और ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री जैसे मुद्दे भी उठाना चाहते हैं। गौरतलब है कि जिमी लाई इस समय जेल में बंद हैं। उधर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बताया कि नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ वैश्विक शांति और विकास पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि सहयोग बढ़ाने, मतभेद दूर करने और परिवर्तनशील तथा अस्थिर दुनिया को मजबूती व निश्चितता प्रदान करने के लिए चीन अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। खबर है कि जापानी स्नैक निर्माता कंपनी कैल्बी अपने कुछ उत्पादों की पैकेजिंग को काले और सफेद रंग में बदलने की योजना बना रही है। इसकी वजह पश्चिम एशिया के हालातों के कारण छपाई स्याही और कच्चे माल की आपूर्ति में अस्थिरता बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार कंपनी ने अपने कारोबारी साझेदारों को सूचित किया है और वो मई अंत तक ये बदलाव करने का इरादा रखती है। कंपनी के अनुसार भावी घटनाक्रमों के आधार पर आगे और बदलाव भी किए जा सकते हैं। इस बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य प्रभावी रूप से बंद होने के कारण जापानी शिपिंग कंपनी एनवाईके लाइन पश्चिम एशिया भेजे जाने वाले मोटर वाहनों के लिए नए मार्ग तलाशने पर विचार कर रही है। कंपनी अध्यक्ष सोगा ताकाया ने सोमवार को बताया कि पश्चिम एशिया में मोटर वाहनों की मांग मजबूत बनी हुई है, इसलिए उनकी सेवाओं की मांग भी मजबूत है। जापान के वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी और जापान यात्रा पर आए अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने विदेशी मुद्रा नीति पर निकट समन्वय बनाए रखने के अपने इरादों की पुष्टि की है। कातायामा ने मंगलवार को टोक्यो में बेसेंट से मुलाकात की। बेसेंट इस सप्ताह पेचिंग में होने वाली अमरीका चीन शिखर वार्ता में भाग लेने से पहले जापानी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। गौरतलब है कि ईरान संघर्ष के बीच डॉलर के मुकाबले येन का अवमूल्यन रोकने के लिए अप्रैल अंत में जापानी अधिकारियों ने मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया था। कातायामा ने कहा, हमने पुष्टि की है कि मुद्रा रुझानों पर जापान और अमरीका एकमत हैं और पिछले साल सितंबर में दोनों देशों के वित्त मंत्रियों द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुरूप हम मिलकर काम करना जारी रखेंगे। जापानी कार निर्माता कंपनियां भारत के बढ़ते मोटर वाहन बाजार में उत्पादन और बिक्री प्रयास तेज कर रही हैं। ऐसे में टोयोटा मोटर का कहना है कि वो महाराष्ट्र में एक नया असेंबली कारखाना लगाने की योजना बना रही है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि वो 2029 की पहली छमाही में महाराष्ट्र में एसयूवी का उत्पादन शुरू करेगी। ये नया संयंत्र भारत में टोयोटा का चौथा होगा और इससे भारत में टोयोटा का वाहन उत्पादन बढ़कर लगभग 5 लाख प्रति वर्ष हो जाएगा। भारत में अग्रणी वाहन कंपनी सुजुकी मोटर का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 तक देश में वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 40 लाख वाहन करना है। होंडा मोटर भी भारत को एक प्रमुख बाजार के रूप में देख रही है और वहां नए मॉडल बेचने की योजना बना रही है। भारत पर ऐसे समय में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जब कई जापानी वाहन कंपनियां अमरीका में इलेक्ट्रिक वाहनों की अपनी रणनीति की समीक्षा कर रही हैं। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।